0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति

0: सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में, नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनू कटारिया। Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. He also emphasized the need to further strengthen the country's defense industry and make it more competitive at global level. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges and implementation issues. Cabinet secretaries, secretaries of key ministries and departments and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Defense Minister Shinzo Koizumi, who is on an official visit to India, called on Prime Minister Narendra Modi yesterday. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The Prime Minister outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense Minister Koizumi briefed Mr. Modi about the progress in bilateral defense cooperation and reaffirmed the Government of Japan's continued commitment towards deepening ties with India. India will host the 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today. The meeting will be chaired by Union Communications Minister Jyotiraditya Sindhya. It will bring together communications ministers and senior representatives from BRICS member countries to deliberate on strengthening cooperation in information and communication technologies, ICTs, digital transformation, innovation and resilient digital infrastructure. The theme of the meeting is Innovate, Cooperate and Transform ICT for a resilient future. The event will provide a platform for BRICS member countries to exchange views on emerging technologies, digital public infrastructure, future networks, cybersecurity, capacity building, and inclusive digital connectivity. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of Jammu and Kashmir High Court in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah disclosed this in a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access

তিনি বৃদ্ধ হলেন, তারা মৃদু হন, জীবনের একটার পর একটা।

खाली कुर्सी, दो कप चाय सब्जा, खुशबू बूंदा बांदी, सुबह सवेरे मुझसे मिलकर तेरी बातें याद आई। दोस्तों, नया सवेरा, नई किरणें और मुस्कुराता हुआ दिन ले आया है आपके लिए सुहानी सुबह सविता के साथ एफएम गोल्ड यानी खरा सोना पर। आप सभी का शुक्रिया अदा करते करते कर देते हैं कार्यक्रम, जी हाँ, आज के दिन के कार्यक्रम की शुरुआत सविता के साथ।

बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आप हमारा कार्यक्रम सुनने बिल्कुल अपने मोबाइल सेट, अपने फ़ोन के, अपने रेडियो के पास आ गए सुनने सुहानी सुबह सविता के साथ। जी हाँ दोस्तों, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम उन सभी का जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में छोटी छोटी अपनी भूमिका अदा की है। जी हाँ, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन सभी का जिन्होंने हमारा दिन बनाया है। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन आस्था के फूल चढ़ाने वाले भैया के लिए जो हमारे दरों दरवाजों तक पहुंचा जाते हैं फूल की थैलियाँ। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम चाय में दूध की मलाई खिलाने वाले दूध वाले भैया का जो पहुंचा जाते हैं सीधे हमारे घर तक। दोस्तों शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम उन अखबार वाले, उन पेपर वाले भैया का जो कि देश और दुनिया की खबरों से हमें करवाते हैं रूबरू। और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम अपने परिवार के हर एक उन सदस्य का जो हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी छोटी छोटी खुशियां लाने की कोशिश करते हैं अपने कामों से। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम उन ठेले वाले, सभी वैन रिक्शा वाले, ठेले वाले, इन सभी बहन भैया को एक का जो कि पहुंचाते हैं सामान एकदम सही जगह पर सही समय पर। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम बस ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर, क्लीनर, सभी उन दोस्तों का जो कि हमारे गंतव्य स्थान पर हमें पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ज़िंदगी की शुरुआत, यदि दिन की शुरुआत हमारी शुक्रिया के साथ हो जाए, धन्यवाद के साथ हो जाए, आभार के साथ हो जाए, तो उससे बड़ा दिन हो ही नहीं सकता। साथ में यदि हम उनसे कह दें कि आई लव यू, हम करते हैं आपको प्यार क्योंकि आपने बनाई है मेरी ज़िंदगी।

सोने पे सुहागा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सावन है ना, जो सावन का महीना चल रहा है, वो भी कुछ कहता है हमसे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी को और हसीन और रोमांटिक जो बनाता है।

खबरों के बीच हम आप पहुंचे हैं आज की अखबारों की खास सुर्खियों के साथ। जी हाँ, आज की अखबारों की खास सुर्खियां क्या हैं ये कर लेते हैं आपके साथ झटपट साझा। जी हाँ, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत क्षमता निर्माण पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। दोस्तों, इसके तहत विचार विमर्श के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों, ग्रामीण वॉश भागीदारों, प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य प्रमुख हितधारकों ने हिस्सा लिया। इसका मकसद ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों सहित फील्ड लेवल पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए क्षमता निर्माण मॉड्यूल की समीक्षा करना और उन पर चर्चा करना है। साथ ही चर्चा मॉड्यूल के कंटेंट, पढ़ाने के तरीके और फील्ड में उनके इस्तेमाल को बेहतर बनाने पर केंद्रित रही। ऐसा इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलग अलग अनुभवों और फील्ड की असल स्थितियों को ध्यान में रखा गया, ताकि JJM 2.0 के तहत उन्हें अंतिम रूप दिया जा सके और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि कार्यशाला का समापन हितधारकों की इस साझा प्रतिबद्धता के साथ हुआ कि क्षमता निर्माण के तरीकों और मजबूत किया जाए और ऐसा व्यापक भविष्य के लिए तैयार फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा जो कि JJM 2.0 के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करे। दोस्तों, एक और खास सुर्खी ये है कि मणिपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की स्मृति में 35वां मणिपुरी भाषा दिवस मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह इम्फाल सहित जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी JNMDA में शांति, एकता और अखंडता के लिए राज्य गीत सना लेइबक मणिपुर विषय पर आयोजित किया गया। इसका आयोजन मणिपुरी भाषा दिवस राज्य स्तरीय समारोह समिति द्वारा JNMDA के सहयोग से किया गया। दोस्तों, एक और खास सुर्खी है जिसकी ओर हम आपको लिए चलते हैं, वो है सेंट्रल रिज में दिल्ली मेगा पौधारोपण अभियान 2026 के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली मेगा पौधारोपण अभियान 2026 और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत सेंट्रल रिज स्थित PBG ग्राउंड्स में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान में जन भागीदारी लगाए गए पौधों की सुरक्षा और उनके दीर्घकालिक संरक्षण एवं जीवित रहने की ओर भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। दोस्तों, इसके अलावा इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पौधारोपण अभियान पोर्टल के माध्यम से नागरिकों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को पौधारोपण के लिए पंजीकरण और सहभागिता की सुविधा दी गई। साथ ही अब तक करीब 1,78,000 लोगों ने पौधारोपण पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिनमें से लगभग 1,54,000 लोगों ने अभियान में भाग लिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों और मोहल्लों तक अभियान को पहुँचाने के लिए 13 वृक्ष रथ तैनात किए गए हैं और इसके माध्यम से 58,000 से अधिक लोगों को पौधारोपण गतिविधियों से जोड़ा गया है। इसके अलावा एक और खास सुर्खी है कि जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलम भारत के तहत डेटा शेयरिंग नीति जारी की, जिसमें मंत्रालय ने कहा कि इस नीति का मकसद पेयजल और स्वच्छता विभाग, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, ग्राम पंचायतों, सरकारी संगठनों और अधिकृत क्षेत्र के हितधारकों के बीच नियंत्रित और अंतर संचालनीय डेटा आदान प्रदान को सक्षम बनाना है। मंत्रालय के अनुसार यह नीति सुजलम भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर डेटा शेयरिंग, अंतर संचालनीयता और हितधारकों तक पहुंच के सिद्धांत भी तय करती है और साथ ही संस्थागत जवाबदेही, निजता और साइबर सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की अखबारों की खास सुर्खियां जो हमने की साझा, और कार्य

हमें आपके लिए मौसम की जानकारी भी लेकर आए हैं, साथ में आज के दिन का इतिहास करेंगे साझा। लेकिन पहले तो आपको सुनवाना बनता है एक गीत।

0: सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
1: जी हाँ दोस्तों, सुहानी सुबह तो है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश जो हो रही है, लेकिन कल से थोड़ी सी झमाझम जो बारिश है उससे थोड़ी सी तो राहत मिली है। कल थोड़ी धूप खिली थी और दोस्तों आज भी जब मैं बाहर निकली तो उम्मीद थी कि शायद धूप खिले, क्योंकि बारिश तो मेरे इलाके में नहीं हो रही थी। अब आपके इलाके में कैसा मौसम है ये तो आप ही जाने, लेकिन फिलहाल सच्ची और सही जानकारी देने के लिए हमारे मौसम विभाग ने हमें थमा दी है ये शीट कि भाई हम आपके साथ मौसम की जानकारी कर लें साझा। तो दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार कोलकाता व कोलकाता के आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से आकाश में बादल छाए रहेंगे और दोपहर के समय तक भी आकाश में बादल छाए रहने की संभावना है। हल्की से मध्यम तर बारिश होने की संभावना है, साथ ही कहीं कहीं गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। दोस्तों अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस था, जो कि सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस अधिक था। न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस था, जो कि सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस अधिक था। अधिकतम नमी 95% और न्यूनतम नमी 67%। कल 0.003 मिलीमीटर बारिश हुई। तो दोस्तों ये थी मौसम की जानकारी जो हमने की आपके साथ साझा। फिलहाल एक गीत और उसके बाद आज के दिन का करेंगे इतिहास साझा।

0: आज के दिन।
1: जी हाँ दोस्तों, आज के दिन वो क्या खास घटनाएं घटी जो हमेशा के लिए हो गई इतिहास में दर्ज। दोस्तों, भारतीय और विश्व इतिहास में 21 अगस्त को बहुत से कारण ऐसे हैं जिनके कारण इसे याद किया जाता है। जी हाँ, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हुई जो हमेशा के लिए वक्त ने सहेज लिया इतिहास में। तो आइए साझा करते हैं आपको ऐसा ही इतिहास। 21 अगस्त 1915 इस्मत चुगताई एक भारतीय उर्दू उपन्यासकार, लघु कथाकार, उदार मानवतावादी और फिल्म निर्माता, उनका हुआ जन्म। दोस्तों, 1916 कॉन्सुएलो वेलास्केस टोरेस, जिन्हें इसी नाम से जाना जाता है, उनका हुआ था जन्म। 1928 में मलेशिया में मलय संस्कृति की एक प्रमुख हस्ती अजा अजीज का जन्म हुआ था। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संसद में पारित हुआ। 1986 में कैमरून में ज्वालामुखी विस्फोट से निकली जहरीली गैस के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई थी। 1988 में भारत नेपाल सीमा पर आए एक शक्तिशाली भूकंप में 1000 लोगों की मौत हो गई। 2005 में बांग्लादेश और भारत के सीमा सुरक्षा बल कर्मियों के बीच युद्ध विराम समझौता संपन्न हुआ। 2007 सऊदी अरब की पहली महिला गायिका तारफा अब्देल खैर आदम, जिन्हें पेशेवर रूप से एहलाब के नाम से जाना जाता है, उनका हुआ था निधन। 2008 श्रीनगर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के राजधानी मुजफ्फरबाद के बीच कारवाए अमन बस सेवा शुरू की गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो हमने की आपके साथ साझा। आज के दिन कुछ खास दिवस भी मनाए जाते हैं। युवा दिवस मोरक्को में युवाओं और देश के विकास में योगदान देने का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है युवा दिवस। इसके अलावा आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यह दिन विश्व भर में आतंकवाद के पीड़ितों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित किया जाता है। इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया में कब्जे के पीड़ित का दिवस मनाया जाता है गॉस्पेल डे। ये माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों में से एक कौसरे में मनाया जाने वाला एक धार्मिक उत्सव है जो ईसाई धर्म के सुसमाचार का जश्न मनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ अखबारों की खास, माफ़ कीजिए दोस्तों, ये थे ऐतिहासिक तथ्य जो हमने किए आपके साथ साझा। और फिलहाल आपके लिए एक गीत।

खुलते ही याद आ जाता है तेरा चेहरा। दिन की ये पहली खुशी भी कमाल होती है। जी हाँ दोस्तों, जो आपके दिल के करीब है उनकी यादें तो आ ही जाती हैं, और याद आ ही गई है तो बस फ़ोन उठाइए और बात कर डालिए। जी हाँ, दिल की बात जो कहनी है वो भी कह दीजिए। बहुत दिनों से हो सकता है आपने किसी से बातें ना की हों, मन ही मन में आपके दिल में ये बात तो ज़रूर होगी कि अरे इतने दिन हो गए अभी तक बात ही नहीं हुई, पता नहीं कैसा होगा वो, कैसी होगी वो, और उनके पास जाना भी संभव नहीं हो रहा है। क्योंकि जो जीवन के जो मरहले हैं ना, वो हमारे ऐसे ही आसान नहीं होते, उनमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं दोस्तों, और हम उन्हीं में बस फंसकर, एक कहते हैं ना कि मकड़ी का जाल होता है, उसी में बस फंसे रह जाते हैं। रात और दिन बस यूं ही गुजरते चले जाते हैं, और हमें कि सोचते रह जाते हैं कि बस आज जाएंगे कल जाएंगे, या फिर उनसे मुलाकात करके ढेर सारी बातें करेंगे, अड्डा करेंगे, या फिर कहीं कुछ नहीं होगा तो फ़ोन पर ही बतिया लेंगे घंटा दो घंटा। लेकिन होता ऐसा नहीं है, हम लगे रहते हैं अपने ही काम में, अपनी ही परेशानियों में, इतने उलझे।

ये रहते हैं कि चाहते हुए भी नहीं कर पाते उनसे बातें, तो बस आपके इंतज़ार में कोई बैठा है और उस इंतज़ार को ख़त्म करना आपका भी फ़र्ज़ है। तो बस उठाइए फ़ोन या फिर मिल ही लीजिए आज।

जी हाँ दोस्तों, बाहर जाए या ना जाए, लेकिन हम फिलहाल थोड़ी देर बाद आपसे इजाज़त तो ले लेंगे, लेकिन उम्मीद है कि आप हमारा कार्यक्रम सुहानी सुबह जरूर सुन रहे होंगे सविता के साथ एफएम गोल्ड यानी खरास सोना पर। अभी वक्त हुआ है 7:48:05। जी हाँ, मैं अभी थोड़ी सी देर और हूँ और करीब दो गाने तो आपको सुनवा ही दूंगी, लेकिन दोस्तों जाने से पहले इतना भी तो कहना है कि 10 बजे नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर हमारी आपकी मुलाकात होगी, और 11:10 पर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में भी तो हम मिलने वाले हैं और एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार के साथ मिलेंगे। ये बात मैं बताऊंगी 10 बजे के कार्यक्रम में, तो उम्मीद है आप 10 बजे का कार्यक्रम सुनेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि 11:10 पर हम किस सिंगर के साथ बातें नहीं उनकी यादों बातों और गीतों का सिलसिला चलाने वाले हैं। और 12 बजे कार्यक्रम सुरभि में संचेता चैनल पर मिलेंगे। 9:10 पर भी मैं कार्यक्रम रसधारा में संचेता चैनल पर मिलने वाली हूँ। तो पलकों के पीछे से मैं कुछ कहने वाली हूँ, सुन लीजिए।

जी हाँ दोस्तों, पलकों के पीछे से हमने बहुत कुछ कह डाला है इस स्टूडियो में पीछे माइक के पीछे बैठ करके, लेकिन अब दोबारा फरमाने का वक्त तो बिल्कुल नहीं रहा। तो हम दोबारा आएंगे और फरमाएंगे बहुत कुछ नॉन स्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। तो उम्मीद है कि उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सब आने वाले हैं और हमारे साथ ढेर सारी गपशप करेंगे। आपकी दोस्त सविता थी FM गोल्ड यानी खरा सोना सुहानी सुबह में। तो अब तक का जो सफ़र है, फिलहाल तो मैं यही कहूँगी कि इजाज़त दे दो भाई, मुझे थोड़ी चाय भाई पी करके आ जाती।

और उसके बाद बैक टू बैक आपके साथ करूँगी ढेर सारे प्रोग्राम। और 11:10 पर लो आ गई उनकी याद मैं, हम यहीं इसी चैनल FM गोल्ड पर मिलने वाले हैं 100.1 पर। दोस्तों चलते चलते लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म प्रेम बंधन का गीत सुनवाते हुए जाऊंगी, ताकि आप भी किसी के प्यार में पागल रहें और मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और प्यार में किसी के डूबे रहें। खुश रहिए, आबाद रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है।

0: पांच दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाय के साथ सुरेखा जोशी।
1: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। दो दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल दो छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को दो भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, NEET या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है, न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
4: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास

0: इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू एक टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे, जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, एक तुर्की नागरिक, एक जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
2: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग टी की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शूशियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
1: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है, 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है, लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक, दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्धजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोकसत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में अवसंरचना और संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों, शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल दो छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को दो भागों में विभाजित कर दिया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विषय विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। एनटीए ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थाई उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: एनटीए ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। एनटीए ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। एनटीए ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है, न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त मंत्रालय ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमरीका के वित्त मंत्रालय के अनुसार ये नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। उधर सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले एमवे लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सीबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय शामिल हैं। हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज एम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। और मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का आज अनुमान है। दिल्ली में आज हल्की वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना और संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों, शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से

0: देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया। भारत आज पुणे में 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: एनटीए ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। एनटीए ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। एनटीए ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमरीका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कूरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंता बढ़ रही है। हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले एमवी लुतूप जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सीबू-1 टैंकर का अपहरण शामिल है। और खेलों में हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं दिल्ली में आज हल्की वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi chaired the 3rd high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministers and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. During the meeting, the Prime Minister urged secretaries to think with a long-term perspective

0: के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विचार विमर्श में ब्रिक्स देशों और व्यापक वैश्विक दक्षिण में डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने के लिए व्यवहारिक सहयोग को बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
1: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पुणे में आयोजित यह ICT ट्रैक डिजिटल तकनीक के माध्यम से समावेशी, टिकाऊ और लचीले विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
0: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। ये बैठक 19 और 20 अगस्त को जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक के बाद हो रही है। मंत्रियों की इस बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन सहयोग और मजबूत होगा तथा पर्यटकों की आवाजाही और लोगों के बीच आपसी मेलजोल को बढ़ावा मिलेगा। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर सकारात्मक बातचीत हुई। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
2: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे, जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। इन जहाजों पर 100 से ज्यादा चालक दल के सदस्य बंधक बनाए गए हैं। वर्ष के पहले 5 महीनों में सोमालिया के समुद्री क्षेत्रों और अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती से जुड़ी 17 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गयी। इनमें कम से कम 3 वाणिज्यिक जहाजों और पारंपरिक लकड़ी के नौकायन

0: पोत, 5 धो का अपहरण शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। इससे औपचारिक रूप से यह माना जाता है कि हिजबुल्ला के सैन्य अभियान, भारी सुरक्षा गतिविधियां और बड़े वित्तीय नेटवर्क IRGC के विस्तार के तौर पर काम करते हैं। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी सोकोटो राज्य में कल एक नदी में नाव पलटने से करीब 47 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार नाव में 80 से अधिक लोग सवार थे। ये लोग काम के लिए गुराउ शहर के खेतों की ओर जा रहे थे। यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूस के बड़े हवाई हमले में 16 लोगों की मौत की खबर है और कई अन्य घायल हुए हैं। हमले में अस्पताल, स्कूल, रिहायशी इमारतों और कई गोदामों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए दूसरे देशों से और पैट्रियट मिसाइलें देने की अपील की है। इस बीच यूक्रेन के हमलों का असर पड़ोसी देशों मोल्दोवा और रोमानिया तक फैल गया है। रोमानिया में यूक्रेन की सीमा के पास एक ड्रोन गिरकर जल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचित होने पर हाकाइंडे हिचिलेमा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत जाम्बिया के साथ अपनी साझेदारी को बहुत महत्व देता है। और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
3: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। सोमाली समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण किया। मालवाहक जहाज के चालक दल में 6 भारतीय शामिल। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज पुणे में 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की

0: की कथित ठगी के मामले में की गई है। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा किया। श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अवसंरचना तथा संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों तथा विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमेरिका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन न मिलने पर बढ़ते से दबाव का संकेत बताया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज ऊंची लहरों से समुद्र का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने चेतावनी दी है कि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, आलप्पुड़ा, एर्नाकुलम, मालप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के तटों पर आज सुबह 11:30 बजे तक 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना है। बैडमिंटन में आज नई दिल्ली में हो रही BWF विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला चीन के तीसरे वरीयता प्राप्त लियांग वई खेंग और वांग चांग से होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है आप सभी की दोस्त सविता सभी दोस्तों का स्वागत करती है कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। जी हाँ, पूरे एक घंटा मैं रहूँगी आपके साथ। और आज क्या सुनवाने वाली हूँ? जी हाँ, आज हम यादों बातों और गीतों का सिलसिला चलेगा। हमारे पार्श्व गायक किसकी आवाज़, आप खुद ही समझ लीजिए।

नहीं नहीं दोस्तों, फिलहाल तो मैं अभी अभी आई हूँ, तो बड़ा कैसे कह सकते हो कि तो चलूँ। बिल्कुल हमारे साथ जो जाते हुए लम्हे हैं, बीते हुए लम्हे हैं, इस प्रोग्राम में हम समेट कर ले आते हैं गीतों के रूप में, यादों के रूप में, बातों के रूप में। दोस्तों उनका बचपन संगीत की धुनों के बीच बीता, किन का? आवाज़ तो आप पहचान ही गए होंगे, बात मैं किन की कर रही हूँ। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम पार्श्व गायक रूप कुमार राठौड़ की। जी आज उन्हीं की बातें हम करने वाले हैं, क्योंकि उनके पिता प्रसिद्ध ध्रुपद वादक स्वर्गीय पंडित चतुर्भुज राठौड़ थे, और लाजमी है कि उनका बचपन संगीत की धुनों के बीच बीतना था। संगीतकार श्रवण राठौर और गायक विनोद राठौर के भाई रूप कुमार राठौर एक सम्मानित तबला वादक थे। 20 वर्ष की आयु में युवा रूप कुमार को 80 के दशक के आरंभ में मेहंदी हसन, गुलाम अली से लेकर जगजीत सिंह, पंकज उदास, हरिहरन जैसे दिग्गजों के गज़ल संगीत कार्यक्रमों में उन्होंने 4 चांद लगा दिए, जब वो तबले पर अपनी थाप देते थे। अपने पिता को गौरवान्वित करने के लिए उन्होंने गायन को अपना पेशा बनाने का निर्णय लिया। उनकी गज़ल एल्बम, जिसमें उनकी पत्नी सोनाली राठौर के साथ और उस्ताद अमजद अली खान, पंडित शिव कुमार शर्मा, गुलजार के साथ सहयोग से बनी ये एल्बम शामिल थी, अपने आप में एक अद्वितीय है। वहीं उनकी सुरीली आवाज़ ने उन्हें हिंदी सिनेमा में एक विशिष्ट स्थान दिलवाया। जी अभी आपने सुना बॉर्डर फिल्म का गीत जाते हुए लम्हे। वहीं उनका संदेश आते हैं जिंदगी मौत ना बन जाए, सरफरोश में त्याग और देशभक्ति की भावना, तो जुनून और तड़प तेरे लिए मैं आपके फिल्म वीर जारा के समय के विरुद्ध प्रतीक्षा, मदन मोहन की पुरानी धुन को जीवंत करना, सूफी स्वर पुकार आँखें तेरी फिल्म अनवर से, तुझमें रब दिखता है रब ने बना दी जोड़ी में प्रेम की आध्यात्मिक भव्यता, ये सभी ऐसे भाव हैं जो रूप कुमार राठौर की आवाज़ में व्यक्त होते हैं। दोस्तों रूप कुमार राठौर खुद अपने बारे में बहुत कुछ बताते हैं, उन्होंने क्या बताया ये तो हम बताएंगे, लेकिन पहले सुनवाएंगे उनकी पहली फिल्म अंगार का गीत सुनवाएंगे आपको, कितनी जल्दी ये मुलाकात।

जी हाँ दोस्तों, सच ही तो है। 11:26:47 हो भी चुके दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूप कुमार राठौर की। वो अपने ही शब्दों में कहते हैं कि संगीत हमारी परंपरा रही है। मेरे पिता स्वर्गीय पंडित चतुर्भुज राठौर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन रूपों में से एक ध्रुपद शैली के एक प्रख्यात प्रवर्तक थे। उनके भाई स्वर्गीय श्रवण राठौर और गायक विनोद राठौर ने संगीत जगत में अपनी पहचान बनाई। और वो कहते हैं कि मेरा पहला प्यार तबला था। एक पेशेवर तबला वादक के रूप में मैंने मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, जगत सिंह, अनूप जलोटा जी, पंकज उदास जी, राजेंद्र मेहता जी, हरिहरन जी, तलत अजीज जी के जैसे गजल गायकों के उस्तादों के साथ संगत की। कहते हैं वो कि मैंने रॉयल अल्बर्ट हॉल में वादन किया और दुनिया भर की यात्रा की। एक बार 1984 में मैंने अपने पिता के संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। मैं लगभग 24 वर्ष का था। मैं पिताजी के पीछे बैठा और उनके अनुपस्थिति एक शिष्य हो गए उस दिन, और उनके स्थान पर तानपुरा वो बजाने लगे। कार्यक्रम शुरू होने के आधे घंटे बाद पिताजी ने मुझे अपना शिष्य समझकर गायन में शामिल होने का इशारा किया, लेकिन मैं गा नहीं सकता था। पिताजी को शर्मिंदगी महसूस हुई होगी, तब मुझे ऐसा लगा। उस साल दिसंबर तक संगीत कार्यक्रम में तबला बजाने के लिए बुकिंग थी, लेकिन उन्होंने सभी प्रतिबद्धताओं का पालन किया और 1985 के बाद मैंने सभी कार्यक्रम ठुकरा दिए और एक गायक के रूप में प्रशिक्षण लिया। वो कहते हैं पिताजी हैरान रह गए। तबला वादक के रूप में वो बोले कि तुमने इतनी शोहरत हासिल की है, दौलत हासिल की है, अब इसे क्यों छोड़ना चाहते हो? तब उन्होंने कहा कि मैं 1980 से 1984 के बीच तबला बजाता था और हर महीने लगभग 25 संगीत कार्यक्रमों में हिस्सा लेता था। हवाई जहाज़ों में सफ़र करता, 5 सितारा होटलों में ठहरता, तालियों की गड़गड़ाहट ही चकाचौन से वाकिफ था, लेकिन सब छोड़ छाड़ कर मैंने गाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि पिताजी का उस दिन जब जिस समय में मैंने मेरे पिताजी ने इशारा किया मैं गाना नहीं गा पाया, उस समय उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई और उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो एक गायक कलाकार बनेंगे। दोस्तों, आगे क्या हुआ, आगे की क्या घटना हुई और किस तरह उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया, ये भी मैं बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल उनकी फ़िल्म अनवर का गीत सुनवाऊंगी। रूप कुमार राठौर की आवाज़, सईद कादरी ने गीत के बोल लिखे और संगीतबद्ध किया मिथुन ने।

जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है रूप कुमार राठौर की। और रूप कुमार राठौर कहते हैं कि जब उनके पिता ने उनकी तरफ इशारा किया संगीत गायन प्रोग्राम के बीच में गायन के लिए, तो वो गा नहीं पाए और उन्हें बड़ी शर्म महसूस हुई। और उसके बाद उन्होंने अपने सभी कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद तबला बजाना छोड़ दिया। करीब लगभग 25 संगीत कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे वो। हर महीने हवाई जहाज़ों से सफ़र करते, 5 सितारा होटलों में ठहरते, तालियों की गड़गड़ाहट थी, सभी चकाचौंध थी। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने गाना शुरू किया और बाकी सब छोड़ दिया। घर में मातम था माहौल का सा, पिताजी को लगता कि किसी ने मुझ पर जादू टोना कर दिया। रूप कुमार राठौर बताते हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पिताजी से सिखाने के लिए कहा तो उन्होंने उन्हें सिखाने से भी मना कर दिया। कुछ समय बाद वो घर में बेचैन रहते, लेकिन 26 जनवरी 1985 को कहते हैं कि मैं लंदन चला गया। वहाँ से मैं

मैं बच्चों को तबला सिखाता था और रात में रियाज करता था। जब मैं अपने पिता और अन्य जाने माने गायकों को गाते हुए बड़ा हुआ था, मैंने सब कुछ आत्मसात कर लिया। मुझे पता था कि श्रोताओं को कैसे मंत्रमुग्ध करना है। एक महीने के भीतर ही मैंने किसी के घर पर एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया। गजलें गाईं चुपके चुपके, हंगामा क्यों बरपाना, आवारगी, घुंघरू टूट गए जैसी गजलें उन्होंने गाईं। लंदन में कहते हैं कि मैंने 16 से 17 कार्यक्रम आयोजित किए होंगे। 2 महीने बाद मैंने भोजों में गाना शुरू किया। प्रेस ने मेरे शो को कवर किया। मैं उन खबरों की कटिंग घर ले आया और अपने पिताजी को दिखाई। तब उन्होंने मुझे तानपुरा दिया और प्रशिक्षण देना शुरू किया। दोस्तों, इस तरह से रूप कुमार राठौर के पिता उनके गुरु बने और उन्होंने उन्हें गायकी की गुर सिखाने शुरू किए। वो कहते हैं, मेरी आवाज़ किसी गायक जैसी नहीं थी, उसमें भारीपन नहीं था। मैं खराज का रियाज करता था, जिसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में मंद्र सप्तक के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी विशेषता गहरी स्वर शैली होती है। मैंने 6 महीने तक गायन का प्रशिक्षण लिया और उसके बाद परवाज उनका पहला गज़ल एल्बम था, उसके बाद बेमिसाल आया। लेकिन ये दुख की बात थी कि 28 जनवरी 1987 को उनके पिताजी का देहांत हो गया, जो सिर्फ 54 वर्ष के थे। उनके जीवन में अंधेरा छा गया, क्योंकि उनके पिताजी और गुरु दोनों को ही उन्होंने खो दिया था। सुनते हैं पहले गीत, फिर उनके बारे में और भी कुछ बातें हम आपके साथ करेंगे साझा।

दोस्तों, रूप कुमार राठौर का सफ़र बहुत ही साधारण तौर पर शुरू हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ की थी। एक समय था जब वो अनूप जलोटा जी के भजन मंडली में तबला बजाया करते थे। वे मंच के पीछे रहते, लेकिन संगीत के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें एक दिन एक केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए गजलों से अपनी राह गुजारने वाले राठौर के लिए फिल्मी और गैर फिल्मी गानों के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत मायने रखता है। दोस्तों, उन्होंने 2008 में रिलीज़ हुई फिल्म तुझमें रब दिखता है, जो गाना गाया रब ने बना दी जोड़ी से का, जब सामने आया तो लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। ये गाना सिर्फ एक सुपरहिट ट्रैक नहीं बना, बल्कि प्रेम का एक प्रतीक बन गया। इस गीत को अपनी जादुई और दिल को छू लेने वाली आवाज़ से सजाने वाले सिंगर रूप कुमार राठौर का कैरियर हालांकि इस एक गाने तक सीमित नहीं है। उन्होंने इसके अलावा बहुत से यादगार गीत दिए, जैसे फिल्म अग्निपथ का ओ सैया और 1997 में आई फिल्म तो चलूं का टाइटल ट्रैक तो अब भी संगीत प्रेमियों की प्लेलिस्ट में शामिल होता है। दोस्तों, रूप कुमार राठौर एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक और संगीतकार तो हैं ही, उन्होंने अपने सुरों और बहुमुखी गायकी से भारतीय संगीत जगत में एक खास मुकाम बनाया है।

वो कहते हैं कि उन्हें लक्ष्मी जी ने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद अनु मलिक ने अच्छा मौका दिया, एआर रहमान जी के साथ गोविंद निहलानी की फिल्म तक्षक, इलियाराजा के साथ फिल्म शिवा में गाने का मौका मिला एआर रहमान साहब, और तो मेरे गाने से बहुत खुश हुए और वो एयरपोर्ट तक उन्हें छोड़ने आए। इलियाराजा तो अपने आप में लीजेंड हैं, उनके साथ काम करने का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। दोस्तों, रूप कुमार राठौर ने हिंदी के अलावा गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगू और बंगाली जैसी कई भाषाओं में गाने गाए।

दोस्तों, आज यादों, बातों और गीतों के सिलसिले में हमने बात की पार्श्व गायक रूप कुमार राठौर की। आकाशवाणी कोलकाता का, जी हाँ, FM गोल्ड है खरा सोना पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त सविता। मुलाकात होगी 30 तारीख को फिर से आपके साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। और चलते चलते आपके लिए कार्यक्रम का अंतिम गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा की। पत्र में श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा

अधिक सुविधाजनक बनेगी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 स्मार्टफोन और 6 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य तबादलों और नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है। सरकार ने कहा है कि इस नीति का समग्र उद्देश्य विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में मानव संसाधनों का संतुलित उपयोग, कर्मचारियों का समान वितरण, कुशल प्रशासन और निर्बाध शैक्षणिक कार्य संचालन सुनिश्चित करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 77,615, जबकि निफ्टी 21 अंक की वृद्धि के साथ 24,253 पर कारोबार कर रहा था। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार एम्स्टर्डम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: জয়পুরে আজ দুদিনের ব্রিক্স পর্যটন মন্ত্রীদের বৈঠক বসছে। ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ ও সংলগ্ন এলাকায় গতরাত্রে রাশিয়ার হামলায় কমপক্ষে 16 জন নিহত। নেদারল্যান্ডসের আমস্টেলভিনে FIH বিশ্বকাপ হকি প্রতিযোগিতায় ভারতের মহিলা দল আজ নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে খেলবে। খবর এখনকার মতো এ পর্যন্তই, এর পরবর্তীকালে খবর শুনুন বেলা 1:30।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्ष में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रूपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। सरकार ने इंडिया पोस्ट के नाम पर ऑनलाइन प्रसारित हो रहे उस फर्जी सर्वेक्षण का खंडन किया है, जिसमें 20,000 रुपए का नकद इनाम देने का दावा कर लोगों से उनकी निजी जानकारी साझा करने के लिए कहा जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये सर्वेक्षण फर्जी है। इसके जरिए लोगों को फंसाकर उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रादेशिक सेना ने राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान विकसित करना है। हैकाथॉन की शुरुआत साइबर पीस के सहयोग से की गई है। इसके तहत शिक्षा जगत, उद्योग, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और सशस्त्र बलों की तकनीकी प्रतिभाओं को एक साथ लाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2025 के अपने फैसले में संशोधन करते हुए प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विधि स्नातकों के लिए 3 वर्ष के वकालत की अनिवार्यता की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति AG मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2-1 से निर्णय लिया और पुनः समीक्षा से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी के अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में है। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,000

0: Communications said the agreement will advance digital innovation, strengthen digital infrastructure, and foster cooperation in emerging technologies. The MOU was signed on the sidelines of the 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune by Union Minister of Communications Jyotiraditya M. Sindhya and Frederico de Sequeira Filho, Minister of Communications, Brazil. Union Minister Sindhya said in a post that the MOU would deepen bilateral collaboration on universal connectivity, cyber security, digital public infrastructure, emerging technologies, capacity building, and exchange of best practices. He called the agreement a strong step forward in bolstering India-Brazil collaboration for a secure and inclusive digital future. More from our correspondent.
1: The MOU provides a framework for structured cooperation in telecommunications, digital infrastructure, and emerging technologies. The agreement follows discussions between the two ministers earlier this year on strengthening India-Brazil cooperation in telecom and digital infrastructure. The partnership is aimed at promoting an inclusive, secure, and resilient digital ecosystem in both countries. It will facilitate exchange of knowledge, expertise, and best practices, as well as encourage collaboration in research, innovation and development of new age communication technologies. India and Brazil have also emphasized the importance of strengthening cooperation in international telecommunications and technology forums. The agreement assumes significance in the context of India's BRICS chairship in 2026, with digital transformation, trusted technology and inclusive connectivity emerging as important areas of cooperation among BRICS countries. With Madhav's report, Komudi Parikh, Akashvani News,
0: Earlier, Union Communications Minister Jyotiraditya Sindhya chaired the 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune. In his opening remarks, Mr. Sindhya said outlined India's vision for a future that is resilient, trusted, innovative, empowering and inclusive, guided by Prime Minister Narendra Modi's commitment to Digital India. He emphasized India's approach of bridging the digital divide to building resilience, fostering innovation, strengthening capacity and enabling sustainable digital transformation.
2: Over the past decade, BRICS has emerged as a leading platform for cooperation among emerging economies, representing nearly half of humanity and an immense reservoir of talent and innovation. Our focus must now evolve from building institutions to delivering measurable outcomes and from exchanging experiences to implementing collaborative initiatives.
0: The BRICS Tourism Ministers meeting is being held in Jaipur from today. The meeting, being hosted under India's chairship, is being attended by tourism ministers and senior representatives of BRICS member countries. Union Minister for Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat welcomed the BRICS tourism ministers. In a social media post, Mr. Shekhawat said that Rajasthan is a fine example of India's centuries-old heritage, vibrant culture and unparalleled hospitality. He expressed confidence that the visiting dignitaries would experience the warmth and richness of the state's traditions during their stay. The Supreme Court today modified its May 2025 verdict, reducing the earlier mandatory 3-year legal practice requirement for law graduates seeking to appear in entry-level judicial service examinations to 1 year. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justices A.G. Massey and K. Vinod Chandran said this in a split decision of 2-1 while dismissing the review petition. The bench said candidates appearing for judicial service examinations notified between 25th May 2025 and 31st March 2027 would remain eligible regardless of prior experience. The Jharkhand High Court has imposed an interim stay on the state government's order cancelling appointments arising from the JSSC, CGL and CDPO examinations. Justice Deepak Roshan's court has sought responses from the state government and the JPSC in the matter. Here is a report.
3: The petitioners argued before the court that the government's decision to abruptly cancel the advertisements and appointments was not in accordance with the prescribed rules. The court has scheduled the next hearing in the matter for September 15th. The High Court had, a day earlier, also imposed an interim stay on the state government's order cancelling JPSC appointments. Student organizations, which had staged a 26-day agitation demanding cancellation of the examinations, have alleged that the government issued the decision without proper legal consultation and that the order could not withstand withstand judicial scrutiny. The organizations have described the development as a breach of the government's assurances to lakhs of young aspirants in the state and have announced statewide protests today. It may be recalled that following the students' agitation, the state government had recently issued a notification cancelling 22 examinations and ordering investigations into several others. The government's decisions are now being challenged before the High Court. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
0: Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi chaired a meeting with officials from the ministry to discuss the roadmap for the next phase of PM Kusum. In a social media post, Mr. Joshi said that during the meeting yesterday, they discussed further promoting agrivoltaics in the next phase of the scheme. He noted that the country has solarized over 27 lakh pumps through PM Kusum so far, and the program has also added 15.8 gigawatts of renewable energy capacities, helping save around 806 million litres of diesel every year. Department of Pharmaceuticals Secretary Manoj Joshi today urged the medical device industry to provide greater input in shaping India's regulatory framework. Speaking at the CII Global MedTech Summit in New Delhi, Mr. Joshi said the industry's participation in regulatory discussions was currently limited and stressed the need for a stronger industry-government dialogue. Mr. Joshi also highlighted the need for stronger testing of both medical device designs and finished products.
4: In medical devices sector, the two aspects are important. One is ecosystem for manufacturing. Government is working on that with the industry to provide support to industry and facilitating them. Another aspect is the regulatory part. The focus has to be what people are making substandard products, to stop that, to facilitate them for upgrading.
0: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has emphasized India's commitment to deepening economic partnership with Singapore and across Asia while fostering stronger business-to-business collaboration. Addressing the non-profit business school INSEAD alumni and students, Singaporean entrepreneurs and Indian businesses at the India-Singapore Business Forum, the minister highlighted India's strong growth trajectory, investment opportunities, and the government's efforts under the leadership of Prime Minister Narendra Modi to enhance the ease of doing business. Mr. Goyal also met Singapore's Minister of State for Foreign Affairs and Trade and Industry, Kan Xiao Huang, and other dignitaries at the APEDA FairPrice Roadshow come in-store promotion being organized for expansion of exports of diverse range of India's agricultural and processed food products. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi rejected the economic threats made against his country, saying that such failed policies will stir more hostility among Iranians and bring more failures. Araghchi's comments came after Trump threatened crushing economic measures against Iran. In a social media post, Araghchi maintained that the threats aim to divert the attention of the American public from domestic financial problems, saying that U.S. economic terrorism threatens the global economy and the national sovereignty of countries around the world. Earlier, U.S. Treasury Secretary Scott Bessent yesterday said that Iran will face the greatest coordinated economic isolation in the history of the world. Pakistan's former Prime Minister Imran Khan was shifted back to Adiyala Jail in Rawalpindi this morning after undergoing a medical examination at a private hospital in Islamabad. Khan was moved to Shifa International Hospital after midnight in compliance with the Supreme Court's order on August 18th, directing that he be transferred there within 2 days after a medical report submitted before it said he was suffering from level 3 plus anxiety. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for very heavy rainfall over East Madhya Pradesh for today, the IMD forecast. Heavy rainfall conditions over Uttarakhand, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Odisha, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim, Uttarakhand and West Uttar Pradesh till tomorrow. Heavy rain has disrupted life across eastern Madhya Pradesh with several rivers in spate and flood-like conditions in many areas, a report.
5: A weather system active over eastern Madhya Pradesh has caused heavy rain in several districts with flood-like conditions in many areas. Rivers and streams are in spate in Dindori, Panna, Rewa, Satna and Chhatrapur. Several rivers including Mandakini and Narmada are flowing above the danger mark. The weather department has issued a heavy rain alert for 16 districts including Niwadi, Tikamgarh and Chhatrapur today. These areas may receive 4 to 8 inches of rain in the next 24 hours. Rainfall is likely to gradually move towards central and western Madhya Pradesh over the next 2 to 3 days. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
0: In badminton, India's Teresa Jolly and Gayatri Gopichand have stormed into the women's double semi-finals of the BWF World Championships in New Delhi. The Indian duo displayed remarkable grit and fighting spirit, coming from a game down to overcome fourth seeds Chia Yifan and Tang Shu Xian of China, 16-21, 21-15, 21-13. In hockey, the Indian women's team will take on the Netherlands in their opening match of the second pool phase of the FIH World Cup in Amstelveen, the Netherlands, today. The match is scheduled to begin at 9:30 p.m. Indian Standard Time. Under the new format, the top two teams from Pool E will qualify for the semi-finals. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones for several projects of 189 crore rupees at headquarters of Sashastra Seema Bal in Siliguri. India and Brazil sign MOU on sidelines of BRICS ICT meeting in Pune to advance digital innovation and cooperation in emerging technologies. Supreme Court reduces three-year legal practice to 1 year for entry-level judicial service examinations. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reiterates India's commitment to deepening economic partnership with Singapore, holds meeting with Trade and Industry Minister of Singapore. And with that, we end the midday news.
6: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची अब समाचार विस्तार से गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है
7: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है मित्रों ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए
6: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से SSP के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स ICT बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
6: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
2: Over the past decade, BRICS has emerged.
8: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
2: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
6: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति AG मसेह और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
9: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
6: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
10: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितंबर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को

0: बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमेरिकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जल मार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
3: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमेरिकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमेरिका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
4: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारत के त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में

बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशू शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडैम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। इस अवसर पर लगभग 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसबी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। इस बीच केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनर्समीक्षा को खारिज करते हुए बहुमत से यह फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
2: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के मित्र देशों को अब फैसला लेना होगा कि वो अब किसके साथ खड़े हैं। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशू शियान को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah inaugurated and laid the foundation stones for several projects worth around 189 crore rupees at the headquarters of the Sashastra Seema Bal, SSB, in Siliguri, West Bengal today. Addressing the personnel following the ceremony, the Home Minister stated that since the BJP government came to power at the centre, the welfare of personnel responsible for border security has been given utmost priority. He highlighted that the SSB is performing the challenging task of guarding open borders with countries like Nepal and Bhutan, calling it one of the toughest duties. Furthermore, he mentioned that understanding the importance of the Siliguri corridor, the central government has stepped up surveillance in the region. India and Brazil have signed a memorandum of understanding to deepen cooperation in telecommunications and information and communications technologies, ICTs, on the sidelines of the BRICS ICT track meeting. In a social media post, the Department of Telecommunications said the agreement will advance digital innovation, strengthen digital infrastructure and foster cooperation in emerging technologies. The MOU was signed on the sidelines of the 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune by Union Minister of Communications Jyotiraditya M. Sindhya and Minister of Communications Brazil Frederico de Siqueira Filho. The Supreme Court today modified its May 2025 verdict, reducing the earlier mandatory 3-year legal practice requirement for law graduates seeking to appear in entry-level judicial service examinations to 1 year. A bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justices A.G. Massey and K. Vinod Chandran said this in a split decision of 2-1 while dismissing the review petition. The bench said candidates appearing for judicial service examinations notified between 25th May 2025 and 31st March 2027 would remain eligible regardless of prior experience. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has emphasized India's commitment to deepening economic partnerships with Singapore and across Asia while fostering stronger business-to-business collaboration. Addressing the non-profit business school, INSEAD, alumni and students, Singaporean entrepreneurs and Indian businesses at the India-Singapore Business Forum, the minister highlighted India's strong growth trajectory, investment opportunities and the government's efforts under the leadership of Prime Minister Narendra Modi to enhance ease of doing business. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi has rejected the economic threats made against his country, saying that such failed policies will stir more hostility among Iranians and bring more failures. Araghchi's comments came after Trump threatened crushing economic measures against Iran. In a social media post, Araghchi maintained that the threats aim to divert the attention of the American public from domestic financial problems, saying the U.S. economic terrorism threatens the

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनसे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभा, कंपनियों और निवेश के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। उन्होंने इसके लिए देश में अनुकूल इकोसिस्टम की जरूरत पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए राज्य सरकार पूरा सहयोग कर रही है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है, जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है, साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र, जिसका वर्तमान अनुमान लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर है, उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकता वैश्विक स्वास्थ्य सेवा बाजारों के लिए प्रौद्योगिकियों को डिजाइन, विकसित, निर्मित और निर्यात करना होना चाहिए। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। ब्रिक्स ICT बैठक से अलग हुआ यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। इस बीच संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। उधर जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की भी बैठक हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस संबंध में अपने पिछले साल के फैसले में संशोधन किया है। न्यायालय की पीठ ने पुनर्समीक्षा खारिज करते हुए बहुमत से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
2: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। उन्होंने ऐसा इकोसिस्टम और माहौल बनाने का सुझाव दिया जहां अंतरिक्ष की चर्चा होने पर लोगों का ध्यान भारत की ओर जाए। बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। बाद में सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि नए और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में उल्लेखनीय साहस दिखाने वाले युवा उद्यमियों और नवोन्मेषकों से मिलकर उन्हें खुशी हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के एक समझौता किया है। ब्रिक्स ICT बैठक से अलग हुआ यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। इस बीच संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और अनुकूल डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। उधर जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि यह विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। श्री नड्डा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जुलाई की घटना का संज्ञान ले लिया है और मामले की जांच के लिए एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का एक अनूठा अवसर है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखने के निर्देश दिए। महान अभिनेत्री सौकार जानकी का चेन्नई में निधन हो गया है। सौकार जानकी ने दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत में लगभग 400 फिल्मों में अभिनय

0: जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिंकू और आप सुन रहे हैं 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना, जिसपे आज हम बात करेंगे चाय और क्लासिक्स और मेरे बारे में बहुत सारी बातें। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 एफएम गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स 100.1 एफएम गोल्ड पर, एफएम गोल्ड पर।
0: जी हाँ दोस्तों, बिताई ना जाए रात बीते दिनों की, छुपाई ना जाए बात बीते दिनों की, लौट कर ना आएंगे फिर से वो दिन, मिटाए ना जाए याद बीते दिनों की। दोस्तों वक्त बदलता है और एक वक्त के बाद बीते हुए वक्त की बातें बहुत याद आती है। चाय और क्लासिक्स ऐसा शो है जिसमें हम बीते हुए बातों और बीते हुए गीतों को फिर से आपके सामने रखते हैं और कड़ियों के साथ संजो कर सुनाते हैं आपको बेहतरीन बेहतरीन गीत। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, हाथ में चाय का कप लिए हुए, गर्माहट और चाय के साथ गरम गरम गीतों का भी मजा लीजिए। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे आपकी कसम फिल्म से। ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में, वैसे तो गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था आर डी बर्मन जी ने। शो चल रहा है चाय और क्लासिक्स का, तो चाय का मजा तो है ही, वैसे गमों को भुलाकर जरा चाय का अपना बदलिए दोस्तों, क्योंकि चाय आपकी उबल रही है। पुरानी यादों के साथ हम बैठे हैं चाय और क्लासिक शो में, तो चलिए देरी नहीं करते हुए सुनते हैं ऐसा गीत जिसे आप भी बहुत दिनों के बाद ही सुन पाएंगे, लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, वैसे तो दीवानापन और मोहब्बत का दर्द बयां कर सकते हैं, और इन शायरियों में जैसे कि उन्होंने लिखा शाहिर की, ये गीत के बोल लिखे थे शाहिर ने, शाहिर लुधियानवी ने, हम जानते हैं एक बेहतरीन शायर की ओर से, और दोनों को समझना बहुत ही

भी मुश्किल है। वैसे लता मंगेशकर जी की स्वर कोकिला स्वर्ण में ये गीत इतना ही हसीन और इतना ही दर्द भरा था जितने कि लोगों को उन बातों के साथ ये पिक्चर लगी थी। वैसे मदन मोहन और जयदेव जी का संगीत इस फिल्म में बरकरार रहा और दीवानगी के साथ इस चाय की दीवानगी भी है, जो एक खास तरीका यह है कि दोस्तों चाय का कड़कपन और एक दीवाने का पागलपन दोनों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। वैसे तो जमाना तो अक्सर उस चीज पर पत्थर उठाता है जिसे वो समझ नहीं पाता है। आइए हम अपने इस दीवानेपन को और भी बरकरार रखते हैं, सुनते हैं लता मंगेशकर मोहम्मद रफी के साथ आनंद बख्शी जी की आवाज में ये गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, तन्हाइयों का दर्द मिटा देती है ये जो गीत है ना, हर गम को भुला देती है। जब घुलते हैं इसमें क्लासिक्स गानों की मिठास, तो ये शाम को एक हसीन महफिल बना देती है। दोस्तों, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाज में अब सुन रहे थे फिल्म चरस का ये गीत। आनंद बख्शी जी के लिखे गीत थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया था। वैसे दोस्तों, क्या बात है, इस गाने को सुनकर दिल जैसा ठहर सा तो गया ही था। आजकल वैसे भाग दौड़ वाली जिंदगी में हम कितना कुछ पीछे छोड़ आते हैं, यही ना कि ये पुराने गाने और हमारे हाथों में जो चाय है, दोनों का तालमेल ऐसा है कि क्या कहने। तो आइए इस तालमेल को हम बरकरार रखते हैं और सुनते हैं चाय और क्लासिक्स में अगला गीत।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम, आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स। चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

0: जी हाँ दोस्तों, किशोर कुमार की आवाज में कुछ ऐसी ही जादू है कि मन ऐसे ही ठहर जाता है। वैसे महबूबा फिल्म के गीत आप सुन रहे थे, फिर से वही गानन आनंद बख्शी जी के लिखे गीत और आर डी बर्मन की संगीत से सजा हुआ ये गीत व्यक्तियों के दिलों को यूं ही नहीं घर कर जाता। दोस्तों वैसे स्टूडियो की घड़ी में 5:43 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं 100.1 एफएम गोल्ड पर खड़ा सोना चाय और क्लासिक्स रिंकू के साथ। वैसे दोस्तों चलिए अभी वक्त है परियोजना प्रस्तुति का।
1: 100.1 एफएम गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति
0: जी हाँ दोस्तों, परियोजना प्रस्तुति में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विषय में। केंद्र सरकार की ये एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी ताकि ग्रामीण और वंचित परिवारों को लकड़ी, कोयले और गोबर के उपले जैसे पारंपरिक अस्वस्थिकर ईंधनों से मुक्ति मिल सके। सरकार द्वारा इस योजना के विस्तारित चरणों उज्ज्वला 2.0 और हालिया विस्तार के तहत अब तक 10.50 करोड़ से अधिक कनेक्शन जारी कर चुके हैं। वैसे इस योजना का मुख्य लाभ और विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को पूरी तरह से डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। कनेक्शन मिलने पर पहली गैस रिफिल और एक गैस स्टोव सरकार द्वारा बिल्कुल मुफ्त प्रदान किया जाता है। 300 की नकद सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के बजट के तहत उज्ज्वला लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 300 प्रति सिलेंडर के सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। इस लक्षित सब्सिडी का लाभ लाभार्थी परिवार प्रतिवर्ष अधिकतम 9 रिफिल सिलेंडर तक उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। आवेदन करने वाली केवल महिला होनी चाहिए जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो। आवेदक के घर में किसी भी तेल विपणन कंपनी जैसे इंडियन एचपी, भारत गैस का पहले से कोई

0: ने एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। श्रेणी आवेदक महिला निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी से संबंधित होनी चाहिए, वो एसटी एससी परिवार की हो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी हो और अंत्योदय अन्न योजना के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ ये भी वर्ग जुड़ा हुआ है। खासकर चाय बगान और जनजातीय क्षेत्रों के निवासी या वन निवासी के लिए ये जरूरी है। ये गरीब परिवार जो सरकार के निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत आते हैं। वैसे केवाईसी भरा हुआ आवेदन फॉर्म और केवाईसी फॉर्म इसके लिए जरूरी है आवेदक महिला का आधार कार्ड और असम और मेघालय को छोड़कर पते और पहचान के प्रमाण के रूप में अनिवार्य है। राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया राशन कार्ड या परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला कोई भी अन्य दस्तावेज लग सकता है। सब्सिडी की राशि प्राप्त करने के लिए आप आधार से लिंक बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड ज्वाइन कर सकते हैं।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। हंड्रेड पॉइंट वन एफएम गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति
2: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स 100.1 एफएम गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स 100.1 एफएम गोल्ड पर।
3: टिक टिक टिक

जी हाँ दोस्तों, मुकेश के साथ आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म आनंद से। वैसे गुलजार के लिखे बोल थे और शलील चौधरी ने इसे संगीत से सजाया था। उसके बाद इससे पहले आप लोगों ने सुना टिक टिक टिक जाए की किशोर कुमार और आशा भोसले मुकेश के साथ ये गीत फिल्म कल आज और कल से। इसके गीत के बोल लिखे थे नीरज ने और संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने। वैसे दोस्तों, बिखरी हुई चीजों में भी हम जान ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग जो हैं वो हर गिरावट में भी उड़ान ढूंढ लेते हैं। वैसे ये शो है हमारे चाय और क्लासिक्स का, और चाय का मजा दुगुना तिगुना हो ही जाता है जब इन गीतों के साथ आपका प्यार और हमारा विश्वास एक साथ मिलकर जन्म लेता है। दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में 5:57 हो चुके हैं और 100.1 FM गोल्ड पर आप ये गीतों का लहर सुन रहे हैं। लता मंगेशकर की आवाज में एक और गीत आपके लिए, उसके बाद कुछ खबरें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने दोहराया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सचिव ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, सूचना और संचार, विनिर्माण, औषधि डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today interacted with chief executive officers, CEOs and founders of 20 space startups in New Delhi. The Prime Minister called for wider applications of space technology to improve lives of people. Mr. Modi noted that the country's space sector can become a magnet for global talent, companies and investment, and suggested creating an ecosystem and an environment where, when the world thinks of space, it looks towards India. Emphasizing greater collaboration between space industry and other social development sectors, the Prime Minister encouraged greater collaboration with Atal Tinkering Labs to nurture curiosity and interest among young minds for space. Government today reiterated that the welfare and security of Indian seafarers community is of high priority for India. Briefing the media in New Delhi, spokesperson of the Minister of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that India continues to closely follow developments in West Asia. Talking about an incident involving two foreign-flagged vessels, Mr. Jaiswal said all 22 seafarers are safe and the government is in touch with the relevant officials regarding this matter to ensure their safety and well-being. On the visit of MEA Secretary Sri Priya Ranganathan to Palestine, the MEA spokesperson said that the secretary handed over consignment of life-saving medicines to the Palestinian government for the people of Palestine for their health needs. Union Minister of Electronics and Information Technology Ashwani Vaishnav today launched the Mobile Phone Manufacturing Scheme MPMS. Union Cabinet had approved the scheme last month with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The scheme tenure will be of 5 years from 2026-27 to 2030-31. The MPMS has two target segments, including incentivizing mobile phone manufacturing and supporting Indian mobile phone brands. The government has said that a total of 29 foreign direct investments, FDI, have been reported under the revised framework till yesterday, involving proposed FDI of more than 4,800 crore rupees. These investments span a range of sectors, including infotech, AI, information and communication, manufacturing and pharmaceuticals, among others. The Minister of Commerce and Industry said that the 29 investments have been reported by investors based in Mauritius, US, South Korea, Japan, Singapore, Luxembourg and the Cayman Islands. Union Home Minister Amit Shah inaugurated and laid the foundation stones for several projects worth around 189 crore rupees at the headquarters of the Sashastra Seema Bal SSB in Siliguri, West Bengal today. Mr. Shah stated that since the BJP government came to power the centre, the welfare of personnel responsible for border security has been given utmost priority. He highlighted that the SSB is performing the challenging task of guarding open borders with countries like Nepal and Bhutan, calling it one of the toughest duties. Mr. Shah also inaugurated an exhibition on Bharatiya Nyay Sanhita in Siliguri. Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda today reviewed the prevailing situation and preparedness for H1N1 influenza in the country with particular focus on the national capital. The ministry informed that Mr. Nadda emphasized the need for continued vigilance, robust surveillance and proactive preparedness with close monitoring of influenza trends. The government has assured that adequate sugar stocks are available in the country to meet domestic demand despite lower than estimated production. In view of the recent price rise in sugar, the government has taken a series of measures to ensure sufficient sugar availability and maintain stable prices for consumers. The Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that it is closely monitoring the situation. Legendary Uriya playback singer Pranab Patnaik, whose distinctive voice captivated generations of music lovers, passed away at the age of 88 in Bhubaneswar today. With a career spanning over 5 decades, Patnaik sang more than 200 films and collaborated with several celebrated national-level singers. He was a 7-time Odisha State Film Award winner and a recipient of the prestigious Jaydev Puruskar. In the BWF Badminton World Championships, India's Trisha Jolly and Gayatri Gopichand have stormed into the women's double semifinals and assured the country of a coveted medal at the prestigious championship. In hockey, the Indian women's team will take on the Netherlands in the opening match of the second pool phase of the FIH World Cup in Amsterdam, the Netherlands today. And that is the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण

0: शिक्षण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। श्रोताओं, भारत की बड़ी आदिवासी आबादी देश के वन क्षेत्रों और उनके आसपास रहती है। इन समुदायों का जीवन जंगल और उसके संसाधनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। जंगलों में मिलने वाली महुआ, शहद, इमली, तेंदुपत्ता, लाख, बांस और औषधि जड़ी बूटियां केवल वन उपज नहीं है, ये उन लाखों जनजाति परिवारों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण आधार भी है। कई जनजाति परिवारों की सालाना आय का 20-40% हिस्सा लघु वनोपज यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से आता है। लेकिन इन जनजाति परिवारों के सामने एक बड़ी चुनौती है, कई बार कच्ची उपज को बिचौलियों के जरिए कम कीमत पर बेचना पड़ता है और इससे उत्पाद जुटाने वाले समुदाय को उनकी मेहनत के अनुपात में आय नहीं मिल पाती। इसी चुनौती को बदलने की कोशिश है प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। वर्ष 2021-22 में शुरू किया गया ये मिशन जनजातीय समुदायों को केवल वन उपज का संग्रहकर्ता बनाए रखने के बजाय उन्हें उसके मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण, विपणन और उद्यमिता से जुड़ने पर बल देता है। मिशन के अंतर्गत जनजातीय समुदायों को वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से संगठित किया जाता है, जहां स्थानीय उपज को बेहतर उत्पाद में बदलने और बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था विकसित की जाती है। साथ ही सरकार लघु वनोपज के लिए पहले से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के जरिए भी आय को सुरक्षा देने का प्रयास करती है। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन की शुरुआत किस तरह हुई, ये जमीन पर कैसे काम करती है और इस मिशन के अंतर्गत जनजातीय समुदायों को कौशल, तकनीक और बाजार के स्तर पर किस तरह का सहयोग दिया जा रहा है। श्रोताओं, जनजातीय समुदायों के लिए जंगल और उससे मिलने वाली उपज का संबंध केवल आर्थिक नहीं बल्कि उसकी पारंपरिक आजीविका से भी जुड़ा है। ऐसे में सवाल ये है कि लघु वनोपज से जुड़ी इस अर्थव्यवस्था को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित कैसे बनाया जाए। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार बना वर्ष 1996 का पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम। इसके तहत जनजातीय क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार दिया गया। इसके बाद वर्ष 2006 में वन अधिकार अधिनियम लागू हुआ। इस कानून ने वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए आजीविका से जुड़े अधिकारों को मान्यता दी। इसके अंतर्गत उन्हें गैर इमारती लघु वनोपज के संग्रहण और बिक्री का अधिकार दिया गया। लेकिन अधिकार मिलने के साथ एक और चुनौती सामने थी, उचित कीमत। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि बीते वर्षों में किए गए प्रयासों ने इन वन अधिकारों को आजीविका के अवसरों से जोड़ने और आदिवासी समुदायों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: यदि बाजार में किसी उत्पाद की कीमत गिर जाए और संग्रहकर्ता को अपनी उपज कम कीमत पर बेचनी पड़े तो उसकी आजीविका सीधे प्रभावित होती है। इसी चुनौती को देखते हुए लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की व्यवस्था विकसित की गई। प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन के तहत 87 लघु वनोपजों के लिए MSP अधिसूचित किया गया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बाजार मूल्य कम होने की स्थिति में भी जनजातीय संग्रहकर्ताओं को एक निर्धारित मूल्य के स्तर पर सुरक्षा मिल सके। लघु वनोपज में बांस, शहद, लाख, तेंदु या केंदू पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां, जड़ें, कंद और इसी तरह के कई गैर इमारती वन उत्पाद शामिल हैं। इस व्यवस्था में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड की भूमिका महत्वपूर्ण है। ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों के विपणन और विकास के लिए काम करने वाली राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था है। ट्राइफेड राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से निर्धारित MSP पर लघु वनोपज की खरीद करता है। इन एजेंसियों में जनजातीय विकास, सहकारी संस्थाएं और वन विकास निगम जैसी संस्थाएं शामिल हो सकती हैं। वर्ष 2013-14 से अब तक राज्य सरकारों ने इस व्यवस्था के तहत 2,67,954 मीट्रिक टन लघु वनोपज की खरीद की है, जिसकी कीमत 693,98,00,000 रुपए रही है। इस अभियान की सोच केवल उपज खरीदने तक सीमित नहीं है। जनवरी 2020 में नीति आयोग ने जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्र विशेष कार्यक्रम को मिशन मोड में तैयार करने की सलाह दी। इसके बाद अक्टूबर 2020 में कौशल विकास और रोजगार सृजन से जुड़े मंत्रियों के समूह ने प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन मेरा वन मेरा धन मेरा उद्यम नाम से एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की। इसी पृष्ठभूमि में पहले से चल रही दो व्यवस्थाओं को मिलाकर जनजाति विकास मिशन की अवधारणा तैयार की गई। एक और था लघु वनोपज के लिए MSP और वैल्यू चेन डेवलपमेंट का तंत्र, जिसमें वन धन योजना शामिल थी। दूसरी तरफ

0: जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की व्यवस्था, इन दोनों को एक व्यापक मिशन के रूप में भी जोड़ा गया। वन धन योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को हुई थी। इसके तहत जनजातीय संग्रहकर्ताओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जाता है। लगभग 15 वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलाकर एक वन धन विकास केंद्र बनाया जाता है, जिसमें करीब 300 सदस्य हो सकते हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य केवल उपज इकट्ठा करना नहीं है, यहाँ लघु वनोपज और अन्य जनजातीय उत्पादों के मूल्यवर्धन और विपणन के लिए सामूहिक व्यवस्था विकसित की जाती है। इस तरह जनजातीय विकास मिशन का मॉडल केवल ये नहीं कहता कि जंगल से उपज लेकर बाजार में बेचिए, बल्कि प्रयास ये है कि जंगल से उपज आए, समुदाय उसे संगठित करें, उसका मूल्यवर्धन हो, उत्पाद तैयार हो और फिर वो बाजार पहुँचे।
1: श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से कच्ची वन उपज से आगे बढ़कर सामुदायिक उद्यम तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है। आज तक 4,172 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 2,911 कार्यरत हैं और इनसे 12,48,000 जनजातीय सदस्य जुड़ चुके हैं। लेकिन किसी भी उद्यम की सफलता केवल उसके ढांचे से तय नहीं होती, इसके लिए कौशल, तकनीक, वित्त, बुनियादी सुविधाएं और बाजार, इन सभी की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन के अंतर्गत जनजाति समुदायों को ये सुविधाएं किस तरह उपलब्ध कराई जाती हैं और एक वन धन विकास केंद्र जंगल की उपज को बाजार तक पहुंचाने में क्या भूमिका निभाता है, आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं।
0: प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के तहत जनजातीय समुदायों को कौशल, तकनीक, वित्त, बुनियादी ढांचे और बाजार से जोड़ने के लिए सहायता का एक पूरा तंत्र विकसित किया गया है। इसकी शुरुआत होती है कौशल विकास से। वन धन विकास केंद्रों में लघु वनोपज संग्रहकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें वैज्ञानिक तरीके से उपज एकत्र करने, उसके प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों को उनकी स्थानीय जरूरत के अनुसार प्राथमिक प्रसंस्करण के उपकरण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इनमें कटिंग और सीविंग उपकरण, डिकॉर्टिकेटर, ड्रायर और पैकेजिंग से जुड़े उपकरण शामिल हैं। यानी जिस उपज को पहले कच्चे रूप में बेचा जाता था, उसे स्थानीय स्तर पर आगे की प्रक्रिया से गुजारकर अधिक उपयोगी और बाजार योग्य उत्पाद में बदलने की क्षमता विकसित की जाती है। इस काम के लिए बुनियादी ढांचे की भी जरूरत होती है। वन धन विकास केंद्रों को लाभार्थी के घर, सरकारी भवन या ग्राम पंचायत भवन में स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भंडारण और परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय जरूरतों के लिए स्वयं सहायता समूह को बैंकों, वित्तीय संस्थानों और नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSTFDC के साथ जुड़कर कार्यशील पूंजी की सुविधा दिलाने का प्रयास किया जाता है। मिशन में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वन धन विकास केंद्रों के सदस्यों को आगे चलकर वन धन प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन उत्पादन और प्रसंस्करण के बाद अगली चुनौती है बाजार तक पहुंच। इसके लिए वन धन विकास केंद्रों को स्थानीय हाट बाजारों से जोड़ा जाता है। जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे 5,000 से अधिक हाट हैं। इन्हें चरणबद्ध तरीके से स्थायी ढांचे, भंडारण, पेयजल, छाया और वजन की सुविधाओं के साथ आधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जनजातीय उत्पादों को स्थानीय बाजार से आगे ले जाने के लिए मेले और प्रदर्शनी आयोजित किए जाते हैं। उत्पादों की ब्रांडिंग और प्रचार तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को विकसित करने पर भी जोर दिया जाता है। ट्राइफेड की ओर से वन धन विकास केंद्रों को बाजार से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें दैनिक दरों और ई कॉमर्स के अवसरों से संबंधित जानकारी शामिल होती है। इससे उत्पादक समूह को अपने कारोबार से जुड़े निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्रोताओं, जब स्थानीय संसाधन स्थानीय समुदाय के हाथों में रहकर उत्पाद और उद्यम का रूप लेते हैं, तो वन आधारित आजीविका केवल आय का साधन नहीं रहती, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण का आधार बन जाती है। यही सोच एक ऐसी जनजाति अर्थव्यवस्था की दिशा दिखाती है, जिसमें परंपरा और आधुनिक बाजार, स्थानीय संसाधन और नई तकनीक तथा सामुदायिक स्वामित्व और उद्यमिता एक साथ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक राजेश कुमार।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

जी दोस्तों, आप सुन रहे थे फिल्म चितचोर से ये गीत, और गीत को सजाया था रविंद्र जैन ने, साथ दे रहे थे और गीत के बोल भी लिखे थे रविंद्र जैन ने। वैसे ये यशुदास जी की आवाज थी और स्टूडियो की घड़ी में अभी बज चुके हैं 6:25। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, एक गीत और सुना देते हैं, इसके बाद रिंकू को इजाजत दीजिए। नमस्कार। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आपके लिए।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आज के कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एके भट्टाचार्य। एके भी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।
1: और सबसे पहले मुख्य समाचार।
0: Benchmark domestic stock market indices end on a flat note. Sensex settles at 77,541. Nifty adds 20 points. India's foreign exchange reserves rise by $9.9 billion in the week ending August 14. And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज लगभग सपाट बंद हुए। सेंसेक्स 77,541 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी में 20 अंक की तेजी आई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 14 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में 9.90 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़ा और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल।

0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ. देश के प्रमुख घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में मामूली बढ़त दर्ज करते हुए लगभग सपाट बंद हुए. सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर पहुंच गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.10% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.07% का उछाल देखा गया. बाजार आज सुबह सकारात्मक रुख के साथ खुले, लेकिन पूरे दिन सीमित दायरे में कारोबार हुआ. भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और वैश्विक बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी तथा कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण बाजार पर दबाव भी बना रहा.
0: Benchmark domestic equity indices ended flat with a positive bias today. Sensex added 3 points to close at 77,541. Nifty rose by 20 points to settle at 24,252. In the broader market at the NSE, the mid-cap 100 index gained 0.10%, while the small-cap 100 index increased by 0.7%. Despite opening on a positive note in the morning, markets witnessed range-bound trading throughout the day due to geopolitical uncertainties, elevated global bond yields and high crude oil prices.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 16 कंपनियों के शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए. प्रमुख कमजोर शेयरों में ट्रेंट और मारुति में 1.51% से अधिक की गिरावट आई, जबकि इंडिगो 1.35% और एचसीएल टेक्नोलॉजी में 1.2% की गिरावट देखी गई. वहीं तेजी वाले शेयरों में पावरग्रिड 2.66%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1.17% और कोटक महिंद्रा बैंक 1.08% में लाभ देखा गया.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 17 out of the 28 sectors registered gains. The top gainers were insurance that rose by 0.94%, utilities as well as mid-small private banks, a quality tilt around 0.7%, mid-small private banks added 0.65%. Among the laggards, FMCG and auto shed 0.68%, housing finance fell by 0.61%, while hospitals lost 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,240 companies advanced, 2,093 companies declined, and shares of 231 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 पर बंद हुआ. एकेबी कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: नमस्कार.
1: मार्केट में आज लगातार दूसरे दिन एक सकारात्मक रुख देखा गया. इससे क्या ये मानकर चलना चाहिए कि सीमित दायरे में कारोबार किया जा रहा है या फिर बाजार में कहीं कोई तेजी आने की संभावना नजर आ रही है?
2: देखिए, सीमित दायरे में काम किया जा रहा है. जो धंधा लोग कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट निवेश कर रहे हैं, सीमित में दौर से काम कर रहे हैं. जो दो तीन जो

0: Because when the bond yields in the US go up, a lot of money which is lying scattered, invested in various markets like India, they tend to go back looking for greener pastures. So that's what will happen. So it is bad thing for the US. It is also bad thing for the global emerging markets like India.
1: सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि वो स्थिति पर करीबी से नजर रख रहा है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में चीनी की कीमत बढ़ी है। पिछले महीने की 20 तारीख को चीनी की कीमत 48 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो कल बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गई। एक ही भी इस खबर पर आपके क्या विचार होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप?
0: देखिए जो हुआ है वो तो जो अक्टूबर से सितंबर का जो शुगर सीजन जो है उसमें जो स्टॉक लेवल जो सितंबर में आएगी वो लेवल जो कंफर्टेबल लेवल जो होता है उससे करीबन 1 मिलियन टन और 1.5 मिलियन टन कम होगा। इसीलिए सरकार का प्लान भी है कि वो रॉ शुगर 0% ड्यूटी में इंपोर्ट करने का भी उन्होंने एक निर्णय लिया है। वो अगर 1 मिलियन टन इंपोर्ट आ जाए उससे ज़रूर हमारी जो डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस की जो स्थिति जो है उसमें उसमें कुछ कंट्रोल आएगी। पर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो शुगर की जो एक डिमांड जो है वो एथेनॉल की सेक्टर को करीबन 2.4 मिलियन टन को एथेनॉल को जाती है, तो वो उससे भी ये प्रेशर बढ़ गया है। और क्योंकि इंपोर्ट का निर्णय लिया गया है, जो शुगर स्टॉक्स जो हैं, अगर आप देखें स्टॉक मार्केट में आज की तारीख में शुगर स्टॉक्स में भी काफ़ी एक एडवर्स इम्पैक्ट आया है, क्योंकि जो शुगर कंपनियां जो हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी बहुत कमी आएगी, इंपोर्ट आने से उनके दाम घट जाएंगे। तो ये एक सार्विक दृष्टिकोण है, पर मैं समझता हूँ कि शुगर इकोनॉमी एक बहुत बड़ी एक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत एक महत्वपूर्ण सेक्टर है
1: जी।
2: In more news, the unincorporated establishments in the non-agriculture sector continued their growth momentum in the first quarter of this financial year. Despite global uncertainties, the sector grew by 9.2% year-on-year for the April to June quarter, according to the quarterly bulletin of unincorporated sector enterprises released by the Ministry of Statistics and Program Implementation today. The estimated number of establishments increases 8.67 crore in this period. Employment in the unincorporated non-agricultural sector reached 13.7 crore, with the other services sector emerging as a key driver, recording employment growth of more than 21%. This is followed by the manufacturing sector, which registered growth of 10.06% in the estimated number of establishments and 6.6% in the estimated workforce. However, the unincorporated trade sector recorded a year-on-year decline of 7.88% in the estimated number of establishments and 7.29% in the estimated workforce. Sir, your comments briefly on this, the unincorporated sector enterprises, the quarterly bulletin that's come out.
0: Well, I think the unincorporated sector is a very important sector. They represent the largest segment of the Indian industry. But I think it's important to note that the urban sector has done better than the rural sector in jobs. And there is a welcome trend that we see of how women employment in these unincorporated sector has seen a significant rise. So both these developments, to my mind, are significant.
2: In more news, the Income Tax Department has said that over 6.5 crore income tax returns have already been filed for the assessment year 2026-27. It includes more than 2 crore ITRs 3 and 4 till yesterday. The department has urged taxpayers to avoid the last minute rush, as the last day to file ITR 3, 4, 5 and 7 is before the 31st of this month.
1: सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है, जिसकी शुरुआत सितंबर 2018 में की गई थी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

0: बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए दामों में स्थिरता बनाए रखने के साथ साथ किसानों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य दिलाना है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया।
1: In more news from the crude oil market, global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 0.67% up at $94.41 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.48% higher at $87.25 per barrel when reports last came in. How concerned are you, AKB? Because even the Urals oil, which comes from Russia, is trading at $89 per barrel because what's happening between Russia and Ukraine in that war. And now you have the threat of economic D-Day on Iran by the US president. How concerned are we about global inflation here?
2: It is a cause for concern. If this situation persists, it will definitely mean a bigger burden on India's crude oil import costs. So therefore, domestic oil companies, which have reasonably weathered the first few months of impact of the West Asian war reasonably well, I would say, along with the government support of reducing the taxes and all that, if this remains at this level for some more time, it will be a cause for concern, prompting the government and the oil companies to take some more steps by which the bottom lines and protection is taken.
0: और आगे बढ़ते हैं। भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट वाला सोना आज 2.25% के उछाल के साथ 1,60,620 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस बीच चांदी 3.72% ऊपर चढ़कर 2,46,630 रुपए प्रति किलोग्राम थी। एक भी हमने अभी देखा कि पिछले 2-3 दिनों में सोना और चांदी दोनों में उछाल देखने को मिल रहा है। इसके पहले एक दायरे के बाद से थोड़ी सी गिरावट भी देखी जा रही थी। इस पर आपके क्या विचार हैं?
2: देखिए, फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है। अगले हफ्ते राखी है। राखी के सामने उसके बाद फेस्टिवल सीजन का आना होता है। मैं समझता हूँ कि अब गोल्ड की डिमांड भी बढ़ेगी और उसके दामों में भी थोड़ी बहुत वृद्धि होगी और उसी का एक आभास इशारा कर रहा है कि गोल्ड के दामों में और भी वृद्धि आने वाली है।
0: एकेबी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू।
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices end on a flat note. Sensex settled at 77,541. Nifty adds 20 points. India's foreign exchange reserves rise by $9.9 billion in the week ending August 14. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
0: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के

0: प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क में है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सुश्री रंगनाथन ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य सरकार सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रही है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को स्वीकृति दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध ना तो विद्यार्थियों के हित में है और ना ही न्याय के हित में। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। यह 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरम मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi today interacted with Chief Executive Officers, CEOs and founders of 20 space startups in New Delhi. The Prime Minister called for wider applications of space technology to improve the lives of people. Mr. Modi said that the country's space sector can become a magnet for global talent, companies and investment and suggested creating an ecosystem and an environment where when the world thinks of space, it looks towards India. Emphasizing greater collaboration between space industry and other social development sectors, The Prime Minister encouraged greater collaboration with Atal Tinkering Labs to nurture

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि घुसपैठियों को पकड़कर देश से बाहर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने राज्य में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में सहयोग नहीं किया। श्री शाह ने कहा कि अब भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार में राज्य में कानून का शासन स्थापित हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना

0: योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क में है।
1: 2 ships which are foreign flagged. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
2: We are in touch with the authorities that are concerned in this.
0: सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्ताव के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का एक अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग $12 अरब का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टलफन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today interacted with chief executive officers and founders of 20 space startups in New Delhi. The Prime Minister called for wider applications of space technology to improve the lives of people. Mr. Modi said that the country's space sector can become a magnet for global talent, companies and investment, and suggested creating an ecosystem and an environment where when the world thinks of space, it looks towards India. Emphasizing greater collaboration between space industry and other social development sectors, the Prime Minister encouraged greater collaboration with Atal Tinkering Labs to nurture curiosity and interest among young minds for space. The government today reiterated that the welfare and security of Indian seafarers community is of high priority for India. Briefing media in New Delhi, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that India continues to closely follow developments in West Asia. Talking about an incident involving 2 foreign-flagged vessels, Mr. Jaiswal said all 22 seafarers are safe and the government is in touch with the relevant officials regarding this matter to ensure their safety and well-being.
2: 2 ships which are foreign flagged, they have been hijacked. We are in touch with the authorities that are concerned in this, and we have 22 Indian nationals and all of them are reportedly safe, but we are looking into the matter, the welfare and safety of our seafarers and seafaring community, to which we attach very high importance.

0: লিখছেন আমাদের ফেসবুক পেজে, এবং এটাই আজকের ফেসবুক পেজের লাস্ট মেসেজ। আমি প্রবীণ, সম্মানে পেট ভরে না, আমার পেটের খবর আগে, পেটের জন্য মানুষ ভিক্ষা মাগে। আমি প্রবীণ, মিষ্টিগুলো আলমারিতে যত্নে সাজানো, শূন্য পকেট কোথায় যাব, সম্মান দিলে কি একটা মিষ্টি পাবো? এমনই হাজারো যন্ত্রণাতে আমি অনেকদিন খাইনি ইলিশ মাছ, সহানুভূতি সম্মান চাই না, চাই একটা টাকার গাছ।
1: সুভাষ চক্রবর্তী উত্তর বাউলি থেকে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে লিখেছেন যে প্রবীণ ব্যক্তিদের প্রতি সমাজের অনেক দায়িত্ব আছে, কেউ কেউ কেবল সহানুভূতি দেখিয়ে দায়িত্ব পালন করে থাকেন, আবার কেউ প্রবীণদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কর্তব্য পালন করে থাকেন। তবে প্রবীণদের পাশে থেকে সঙ্গদান করা আজকের দিনে কিন্তু একান্তই প্রয়োজন, সুভাষ চক্রবর্তী কিন্তু জানিয়েছেন উত্তর বাউলি থেকে। এরপরে কিন্তু আরও বেশ কিছু রয়েছে আমাদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ। রমা রায় দাসনগর হাওড়া পাঁচ থেকে তিনি বলছেন, সম্মান থাকলে, আচ্ছা প্রবীণরা সমাজের অলংকার, অবশ্যই তাদের দিতে হবে সম্মান ও অধিকার। সম্মান থাকলে সহানুভূতি আসবে সহজে, প্রবীণদের প্রতি সুদৃষ্টির প্রয়োজন, ডাকুন তাদের ইচ্ছে মতো কাজে। প্রবীণরা আমাদের প্রতি পক্ষ নন, আমরা সবাই বরং সহযোগী, তাদের গড়া সমাজে সমাজে আমরা সবাই আত্মভোগী। প্রবীণদের প্রতি অবহেলা নয়, যথাযথ শ্রদ্ধা সম্মান, তবেই পরবর্তী প্রজন্ম শিখবে আজ হবে উন্নত মান। প্রবীণরা সংসারে অপরিহার্য, তারা পরিবারের মূল্যবান সম্পদ, পরিবারের দুঃসময় সাহস ধৈর্যের প্রতীক, মনে রাখুন তাদের মূল্যবোধ। প্রবীণরা সম্মান ও স্বীকৃতি চান, একসময়ের কর্তা এবং কর্তী, যে কোনো উপযুক্ত সম্মান কিন্তু তারা যাতে পায়। রমা রায় কিন্তু জানিয়েছেন আমাদেরকে এই মেসেজটা। এরপরে আমাদের পড়ার সময় হয়তো অতটা থাকছে না, সৌভিক সরকার কসবা হালদু থেকে ছোট্ট করে বলে দিই, তিনি বলছেন, প্রবীণ মানুষদের প্রতি শুধু সহানুভূতি দেখানোই তো যথেষ্ট নয়, তাদের প্রাপ্য সম্মানটাও দেওয়া কিন্তু জরুরি, কারণ তারা করুণার পাত্র নয়, তারা আমাদের সমাজ, পরিবার ও জীবনের অভিজ্ঞতার কিন্তু একটা ভাণ্ডার। তাদের জীবনের এই যে দীর্ঘ পথ চলা, ত্যাগ, সংগ্রাম, অভিজ্ঞতাকে মূল্য দেওয়া আমাদের কর্তব্য বা আমাদের দায়িত্ব। সহানুভূতি মানুষকে কখনো কখনো দুর্বল হিসেবে দেখায়, কিন্তু সম্মান তাদের কিন্তু প্রাপ্য মর্যাদা কিন্তু ফিরিয়ে দেয়। খুব ছোট করে পড়লাম, আর একদম শেষে বলি, লিখছে দিদি, বোথ আর সুইট। আচ্ছা বেশ,
0: আমাদের স্টুডিওর ঘড়ি কিন্তু বলছে এখন 8:44, অর্থাৎ আজকের মতো আপনার কথা থেকে বিদায় নেব সুস্মিতার মৌসুমী, কিন্তু ফিরবো ঠিক রাত 9:30। হ্যাঁ, আর ঠিক,
1: আর প্রাপ্তি শিকারে বলে দিই, খরসরাই বেগমপুর হুগলি থেকে কিন্তু উত্তম দালালও আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করেছেন, কিন্তু সময়ের অভাবে কিন্তু আমরা পড়তে পারলাম।
0: সঙ্গে থাকুন 100.1 FM গোল্ডের।
2: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে বিশাল শর্মা। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
2: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
4: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
2: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
4: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
2: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
6: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि यह योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
8: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। PLI केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस था, इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन IP को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए हैं।
7: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
9: 2 ships which are foreign flag. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
10: We are in touch with the authorities that are concerned in this.
7: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग $12 अरब का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
11: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
7: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. Prime Minister Narendra Modi has said India has been seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
13: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों, रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
12: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was a policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्जवल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड्स लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है, जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा

100.1 FM Golde. গানে কথায় গোল্ডেন সময়, আপনি শুনছেন 100.1 FM Gold. 100.1 FM Gold.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं ला रही, बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की कामना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का एक अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग $12 अरब का है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी। मंत्रालय ने इस योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। महिला

कि विश्व कप में दूसरे चरण के अपने पहले मुकाबले में भारत को नीदरलैंड से हार का सामना करना पड़ा। अम्स्टरडैम में खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 0-2 से हरा दिया। भारत की ये टूर्नामेंट में पहली हार है। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपी चंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यीफेन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।